Good morning, Chitrapati Sambhaji Nagar. You are listening to MGM 90.8 FM. Bande ka naam hai Adnan. Aur aapka manoranjan karne aa chuka hu infotainment ke saath in the show. और आज है 1 अक्टूबर 2026। देखते ही देखते अक्टूबर का महीना भी शुरू हो चुका है भाई साहब बहन जी। और भाई एक आपको सीरियसली एक बात बताओ, 2026 का ना अक्टूबर शुरू है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये साल ख़त्म होने बस 3 महीने बाकी है और कितने फास्ट ऐसे दिन गुजरे ऐसा नहीं महसूस हो रहा है, हो तो रहा है भाई, पता नहीं ऐसा कुछ हो ही जाता है। खैर नया महीना है, एक नई शुरुआत करते हैं। और ये अक्टूबर का महीना मतलब कैसा पूरा सीज़न है त्योहारों का, सेप्टेम्बर और अक्टूबर लेकर आता है त्यौहार, फिर नवंबर भी है भाई, ये 3 महीने एकदम अच्छे से गुजरने वाले। बाकी अब जो चीज़ें जो पेंडिंग काम जो कुछ गलतियाँ पिछले महीने हो गई है वो इस महीने मत कीजिएगा और नए से शुरुआत करने की कोशिश कीजिएगा। और आज की ये नई मॉर्निंग है, पहला दिन है तो मूड फ्रेश करके आज के दिन का आगाज कीजिएगा। आज के शो में बहुत सारी बातें होगी, मुलाकातें होगी, हसीन नगमों का साथ भी होगा, बट कुछ ही देर के बाद, अभी तो शो का आगाज हुआ है, बातें होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: किस्सों का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: एक भूखा भेड़िया एक रूम में बंद था। सामने दीवार पर एक स्पीकर लगा था। रूल सिंपल था, स्पीकर बजेगा और मशीन से खाना गिरेगा। शुरुआत में स्पीकर सिर्फ 2 सेकंड के लिए बजता और खाना नीचे गिर जाता। भेड़िया तुरंत खा लेता। कुछ दिनों बाद एक्सपेरिमेंट बदल दिया गया। स्पीकर लगातार 1 मिनट तेज आवाज करने लगा, उसके बाद खाना गिरता। भेड़िया भूखा था, लेकिन इस बार वो खाने के पास नहीं गया। वो बस उस कान फाड़ देने वाली आवाज को घूरता रहा। आवाज जितनी लंबी होती गई, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। आखिर में वो पागल होकर स्पीकर पर टूट पड़ा, पूरी मशीन फाड़ दी और खुद को मिलने वाला खाना भी खत्म कर दिया। क्योंकि कई बार इंसान या जानवर भूख से नहीं, लगातार मेंटल प्रेशर से टूटता है। रियल लाइफ में भी तो यही होता है। हर वक्त टोका जाना, हर मिनट एडवाइस मिलना, हर छोटी बात पर सुनाना धीरे धीरे इंसान के अंदर रेजिस्टेंस भर देता है। चाहे फिर पेरेंट्स हो, पार्टनर हो या फिर कोई और हो, जरूरत से ज्यादा प्रेशर प्यार को भी बर्डन बना देता है। इसलिए हर सही बात हर टाइम बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि लगातार नॉइज सबसे अच्छी रिलेशनशिप को भी थका देता है।
0: किस्सों का कारवा आरजे अदनान के साथ ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: किसी किसी को आदत होती है बैठे बैठे खो जाने की। यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM। बड़ी आदत एक बीमारी भी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में हम जान रहे तो इसमें हम ये पता चला है। तो इस पर बात करने के लिए अपने साथ है डॉक्टर मानसी करजगांवकर मैम, साइकोलॉजिस्ट। सो मैम, एक सवाल आपसे ये है कि अक्सर हम देखते हैं कुछ लोग ना तो बैठे बैठे खो जाते हैं, एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, या तो फिर कोई बात कर रहा है इंसान और बात करते करते एकदम शांत होता है, उसको थोड़ा आवाज़ दी, उसको हिलाया तो वो वापस से जगह पर आता है, वरना एक अपने अलग दुनिया में वो चला जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है?
1: हमको बहुत माइंडफुल रहना होगा और हमको प्रेजेंट टेंस में रहने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हम जब ओवरथिंक करते हैं हम उस थॉट्स के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, हम पास्ट में चले जाते हैं, हम किसी और सिटी में पहुँच जाते हैं, तो हमारा ब्रेन ऑलरेडी वहाँ पे रहता है। एंड इन अ वे इट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि तब हम मान लीजिए ड्राइव कर रहे हैं या और कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं और हमारा ध्यान ही नहीं है बिल्कुल। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम खो जाते हैं, है ना, टर्न मिस हो जाता है क्योंकि हम थिंकिंग में कहीं और ही थे। तो वेन एवर यू नो वी आर ड्राइविंग और वॉट एवर वर्क वी आर डूइंग, हमको थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा, हमको प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा। जैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए हम थोड़ा हॉर्न बजा देंगे कि हम थोड़ा वापस आ जाए, है ना, और या तो कोई काम कर रहे हैं तो हम ना थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, थोड़ा 5 कदम चलेंगे, सो दैट वी कम बैक। फिर हम किसी चीज़ को, जैसे टेबल है हमारे ऑफिस में, हम उसको छुएंगे टेबल को और हम उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे कि इसका टेक्सचर कैसा है, ये सॉफ्ट है, हार्ड है, ये क्या है, तो ये हमें बैक टू प्रेजेंट मोमेंट लाएगा। सो दीज आर सम यू नो एक्सरसाइजेज जो हम प्रेजेंट टेंस में वापस आने के लिए करेंगे और ये हमको टेम्प्रेरीली ही वापस लाएंगी। इसीलिए तो हमें माइंडफुल रहना है कि जैसे ही हमारा मन भटक रहा हो तो ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस करके हमको उसे वापस लाना होगा, वरना हम यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे।
0: सो दोस्तों, ये सब बातें याद रखिएगा मैम ने जो बताई, और आपके भी दिमाग में कुछ सवाल होगी रिलेटेड टू ओवर थिंकिंग या मेंटल हेल्थ तो बेझिझक हमसे आप पूछ सकते हो 9359320080 इस नंबर पर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
2: महात्मा गांधींचे विचार तुमच्या अभिनयातून मांडण्याची सुवर्ण संधी, MGM विद्यापीठाच्या संगीत व नाट्यशास्त्र विभागाच्या वतीने आयोजित महात्मा गांधींच्या विचारधारेवर आधारित पथनाट्य स्पर्धा। महाविद्यालयीन, शालेय व कोणत्याही संस्थेचे संघ सहभागी होऊ शकतात। संघात 6 ते 15 कलाकार असावे। सादरीकरणाचा कालावधी 10 ते 15 मिनिट। मोफत प्रवेश आणि ₹1,000 रोख पारितोषिके जिंकण्याची संधी। स्पर्धा दिनांक 3 ऑक्टोबर 2026 रोजी MGM विद्यापीठामध्ये। संपर्क 9881214898 आणि 9075023520।

हेलो दोस्तों, वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और आज बहुत खास है क्योंकि हमारे पास आई है बहुत ही प्यारी सी फरमाइश और एक मैसेज. ये गाने की रिक्वेस्ट आई है हमारे लिस्नर की तरफ से, जिनका नाम है शैलेंद्र देशमुख, जो अपने लाइफ के उस स्पेशल इंसान को ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं. उनका कहना है कि लाइफ में अगर प्यार हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान लगती है. सो गाने का नाम है

पेश खिदमत में शराबी इस फिल्म से ये आइकॉनिक गाना किशोर कुमार जी की आवाज में दे दे प्यार दे। ये फिल्म आई थी 1984 में शराबी, और इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर थे बप्पी लहरी। और इस फिल्म में ना शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया प्रदा जी थे, और बहुत ही बेहतरीन ये फिल्म थी। तो चलिए फिर आप इसी फिल्म से गाना एंजॉय करते हैं। बाय द वे, अगर आपकी भी कुछ फरमाइश हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। फिलहाल तो सर की फरमाइश पर गाना एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी

0: बाय द वे आपल्या शहरात ना लाखो रुपये करोडो रुपये खर्च करून लोकांच्या सेवेसाठी एक स्काय वॉक तयार करण्यात आला आहे. एक काय दोन चार आहेत पण खरंच आपण त्या स्काय वॉकचा वापर करतोय का? तर नाही नाही म्हणजे नाहीच. हमें तो मौत से खेलने की आदत लग चुकी है और मौत को छोके टक से वापस आने का एक शौक भी चढ़ चुका है. स्काई वॉक मतलब पता है ना आपको क्या है? वही जो हमने देखा है सेवन हिल ब्रिज क्रॉस करने के बाद सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास से जो ब्रिज आता है ताकि लोग वहाँ से रास्ता क्रॉस करे उसको स्काई वॉक कहते हैं. और वैसा ही एक ब्रिज ना अपने सेंट्रल बस स्टैंड के पास भी लगाया हुआ है ताकि लोगों को आसानी हो जाए रोड क्रॉस करने में जो पैदल चलते हैं. लेकिन लोग खतरों के खिलाड़ी खेलते हैं और स्काई वॉक का यूज ना करते हुए सीधे ट्रैफिक वाले रास्ते से रोड क्रॉस करते. खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए और गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे वक्त क्या करोगे भाई? गलती तो आपकी है क्योंकि प्रशासन ने तो भाई स्काई वॉक तैयार करके दिया है, लेकिन इस्तेमाल कौन करेगा? क्योंकि रूल्स फॉलो करना ये तो अरे अरे ये तो हमसे होगा ही नहीं. तो इसीलिए भाई और स्पेशली कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं वो इतने मुश्किल तरीके से रास्ता क्रॉस करते हैं और कुछ लेडीज भी होती है भाई साहब और बहन जी, अगर गलती से थोड़ा भी धक्का लग गया ना गाड़ी का तो बड़ा नुकसान हो सकता है. तो प्लीज कृपया करके आप सभी से दरख्वास्त है अपने शहर में जहां जहां पर स्काई वॉक बनाए हुए हैं उसको यूज कीजिएगा, वरना स्काई वॉक कम और वो रील बनाने की स्पेस बन चुकी है. क्योंकि अब अगर स्काई वॉक खाली रहा तो लोग क्या करेंगे, वहां पर आके टाइम पास करेंगे, रील्स बनाएंगे. तो आजकल यही चल रहा है स्काई वॉक पर. तो बी से बी केयरफुल, क्योंकि जान है तो जहान है. भले आपको स्काई वॉक से एक मिनट लेट होगा लेकिन आपकी जान तो बचेगी. फिर मत कहना कि यार काश मैंने स्काई वॉक यूज किया होता तो आज मेरा एक्सीडेंट ना होता. तो गलती आपकी है तो कुछ चीजें बनाई है ना प्रशासन ने हमारी सेफ्टी के लिए, तो उसका तो इस्तेमाल करो. वरना अक्सर कहते हैं कि प्रशासन कुछ करती नहीं है, जब करती है तो आप उसका यूज नहीं करते हो. खैर मेरा तो काम है भाई बोलना, मैंने तो बोल दिया, बाकी आपकी जिम्मेदारी. बट इतना ही कहूंगा कि स्काई वॉक है, यूज कीजिए और सुनते रहिए.
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एंड फाइव, छत्रपति संभाजी नगर।

एक कचोरी दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा, ये स्लोगन तो हम सभी ने सुना ही है। इंस्टाग्राम पर ये स्लोगन बहुत वायरल हो रहा है। जो दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू है लड़कियों का, उसको लेकर ये स्लोगन है। और ऐसे बहुत सारे स्लोगन हैं जो बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसमें से ट्रेंडिंग में है कि एक कचोरी दो समोसा, इन मर्दों का क्या भरोसा, एक कचोरी दो समोसा, हम मर्दों का क्या भरोसा। बात बहुत गहरी है भाई, इसको लाइटली मत लीजिएगा। कोई लड़की आपकी फीमेल फ्रेंड हो, आपके ऑफिस में कलीग हो, स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, अगर वो आपके साथ सेफ फील कर रही है ना, तो आप असल मायने में मर्द हो। वो कहते ना कि यार मैं माचो मैन हूँ, मर्द हूँ, मर्द वाला रुबाब होता है भाई, वो कब तय होता है पता है? अगर आपके आसपास कोई लड़की हो और वो अगर आपके साथ सेफ फील कर रही हो, तब वो रुबाब ना आप पर सूट होता है। वरना अगर आप जहाँ होते और वहाँ की लड़की आसपास जो फीमेल है वो अगर सेफ फील नहीं करती है, तो वो मर्दांगी कुछ काम की नहीं है, बस दिखावे से नहीं आती, अपने स्वभाव में लाना पड़ती है। तो एक कचोरी दो समोसा, हम मर्दों का क्या भरोसा, ये जो स्लोगन है ना, इसको चेंज तो करना पड़ेगा भाई। इसके लिए मर्दजात हमें सुधरना तो पड़ेगा। आप कहेंगे कि यार सब लड़के ऐसे नहीं होते, मानता हूँ सब लड़के ऐसे नहीं होते, लेकिन जितने भी ऐसे होते ना, तो कहीं ना कहीं सुधरना पड़ेगा ही ना। और जो अक्सर रिस्ट्रिक्शंस पेरेंट्स लगाते हैं ना लड़कियों पर, कि 7 के बाद घर के बाहर नहीं निकलना, इस टाइम से घर पर लौट कर आना, वैसे रिस्ट्रिक्शन लड़कों पर भी लगने चाहिए। क्या करता है आपका लड़का रात रात भर घूमकर, कहाँ घूमता है, किसके साथ होता है, क्या हरकतें करता है, उसके फ्रेंड सर्कल कैसे, उसका नजरिया कैसा है, इन सब बातों पर भी नजर डालना और अपने बेटे को भी इक्वल ट्रीट करना, ये भी जरूरी होता है। तो लड़कियां तो पढ़ ही रही है, अब लड़कों को पढ़ाने की जरूरत है और उन्हें समझदार बनाने की जरूरत है। तो याद रखिए, अब वो वक्त है राजा बेटा को सुधारने की, क्योंकि राजा बेटा सुधार लो, रानी बेटी तराज कर लेगी। Stay tuned. Only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: भाई लड़कियां कैसे पागलों वाली बात कर रही है ना, कि लड़कों को सिखाओ हमें मत सिखाओ, ऐसा कुछ कुछ लोग तो समझेंगे ही। लड़कों को तमीज में रहना जरूरी है, क्या गलत बोल रही है, सही तो बोल रही है। एक छोटी सी बात है कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अब इतनी छोटी बात समझने के लिए कोई कोर्स थोड़ी ज्वाइन करोगे, इतने तुम तो पागल नहीं होना लड़के। तुम्हें इतनी सी छोटी बात समझ में नहीं आती कि हमें किसी भी लड़की को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहिए, हैरेस नहीं करना चाहिए, रेप नहीं करना चाहिए। तुम्हें इतनी छोटी बात समझ में नहीं आती। यू आर बोर्न एज अ मैन एंड मेन्स आर प्रोटेक्टर, मेन्स आर प्रोवाइडर। भाई तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना कि लड़कियों को सेफ फील कराना, उन्हें कंफर्टेबल फील कराना, क्योंकि मर्दों की वजह से ना तो इस समाज इतना ज्यादा अनसेफ हो गया है कि जो ड्रीम सिटी होती है ना, जहां पर मन करता है जॉब करने का, और वही सबसे अनसेफ प्लेस बन गई है। पर वही वाली बात आई ना भाई, जिसके साथ होता है ना उसे तभी समझ में आता है। तो तुम्हारी भी माँ बहन होगी, तुम्हारी भी बेटी होगी, भगवान ना करे उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए, अगर तुम मर्द जात में पैदा हो चुके हो तो तुम्हारे ऊपर एक प्रोटेक्टर का टैग ऑलरेडी लग चुका है। तो जो लड़कियां तुम्हारे साथ रहती है ना, सेफ फील कराना ये हमारी जिम्मेदारी, उन्हें कंफर्टेबल फील करवाना ये हमारा फर्ज है। वैसे अनसेफ की बात हो ही रही है तो अपने शहर में भी ना लड़कियां सच में उतना सेफ फील करती है या नहीं, ये तो हम सभी को पता है कि अपना शहर भी कितना सेफ है और अपने यहाँ पर भी ऐसे कितने सारे मामले सामने आए हैं। तो वही सवाल है कि अगर लड़की आपके साथ है तो उसको सेफ फील करवाना हर एक मर्द की जिम्मेदारी है। ये बात को याद रखिए एंड सुनते रहिए।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: Let's talk about women's safety. You're listening to MGM 90.8 FM. और अभी जो कुछ चल रहा है हम सभी को पता है. एंड अपने छत्रपति संभाजीनगर में विमेन सेफ्टी कितनी है, अपने यहाँ पर के लेडीज लड़कियाँ महिलाएं सुरक्षित फील करती है या नहीं, आइए जानते हैं.
1: नमस्कार, माझं नाव गौरी, मी गजानन मंदिर विजयनगरच्या तिकडे राहते. मुली उशिरा जॉब वरून घरी येतात आणि त्यांचा सुरक्षेचा प्रश्न पडतो. आजकालचं वातावरण पाहिलं तर खूप खराब आहे. मुली बाहेर असतील तर त्यांच्या सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होते. त्यामुळे शहरात चांगले प्रकाश व्यवस्था, पोलिसांची व्यवस्था आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक असणे गरजेचे आहे. मुलींना सुरक्षितपणे कुठेही जाता येईल असं वातावरण निर्माण झालं पाहिजे. धन्यवाद.
0: एक्झॅक्टली, बात तो एकदम सही है. तो इस वजह से विमेन सेफ्टी के लिए प्रशासन ने कुछ ना कुछ अहम कदम उठाने चाहिए ताकि अपने शहर की लड़कियां सेफ फील करे. और हम सबकी भी जिम्मेदारी होती है कि अपने शहर की महिलाओं की सेफ्टी की और उन्हें कोई दिक्कत ना हो और उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखने की. तो मर्दों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि असली मर्द वही होता है अगर कोई लड़की उसके साथ सेफ फील करती है, या जब वो रास्ते से गुजरता है तो सामने से अगर कोई लड़की आ रही है वो अगर आपको देखकर रास्ता ना पलट ले तो आप सच्चे मर्द हो. वरना छपरे बना तो बहुत चलता है, हम सभी ने देखा है. लड़के सरेआम लड़कियों को छेड़ते हैं, चाहे फिर कैनोट पेस हो, जाना रोड हो, कोई कॉलेज के सामने का एरिया हो या हर जगह हो. तो अगर मर्द बनना है तो महिलाओं की सुरक्षा करनी आनी चाहिए, ये हमारा फर्ज है मर्दों का, समझे. स्टे ट्यून्ड
2: ओनली ऑन MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

किसी को बनाता है ना तो उसमें कुछ खास बात होती है, लेकिन खुदा ने अदा को बनाया इसीलिए वो खास बात खुदा ने।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी।

0: इंटेलिजन्स शाळेसमोर नागेश्वरवाडी रोड निराला बाजार छत्रपती संभाजीनगर कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331
1: घोला जाए फूलों का शबाब उसमें फिर

एक कचोरी दो समोसा इन मर्दों का क्या भरोसा, ये स्लोगन तो हम सभी ने सुना ही है। इंस्टाग्राम पर ये स्लोगन बहुत वायरल हो रहा है, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू है लड़कियों का उसको लेकर ये स्लोगन है। और ऐसे बहुत सारे स्लोगन हैं जो बहुत वायरल हो रहे हैं, जिसमें से ट्रेंडिंग में है कि एक कचोरी दो समोसा इन मर्दों का क्या भरोसा, एक कचोरी दो समोसा हम मर्दों का क्या भरोसा। बात बहुत गहरी है भाई, इसको लाइटली मत लीजिएगा। कोई लड़की आपकी फीमेल फ्रेंड हो, आपके ऑफिस में कलीग हो, स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, अगर वो आपके साथ सेफ फील कर रही है ना, तो आप असल मायने में मर्द हो। वो कहते ना कि यार मैं माचो मैन हूँ, मर्द हूँ, मर्द वाला रुबाब होता है भाई, वो कब तय होता है पता है? अगर आपके आसपास कोई लड़की हो और वो अगर आपके साथ सेफ फील कर रही हो, तब वो रुबाब ना आप पर सूट होता है। वरना अगर आप जहाँ होते और वहाँ की लड़की आसपास जो फीमेल है वो अगर सेफ फील नहीं करती है, तो वो मर्दांगी कुछ काम की नहीं है, बस दिखावे से नहीं आती, अपने स्वभाव में लाना पड़ती है। तो एक कर चोरी दो समोसा हम मर्दों का क्या भरोसा, ये जो स्लोगन है ना, इसको चेंज तो करना पड़ेगा भाई। इसके लिए मर्दजात हमें सुधरना तो पड़ेगा। आप कहेंगे कि यार सब लड़की ऐसे नहीं होते, मानता हूँ सब लड़की ऐसे नहीं होते, लेकिन जितने भी ऐसे होते ना, तो कहीं ना कहीं सुधरना पड़ेगा ही ना। और जो अक्सर रिस्ट्रिक्शंस पेरेंट्स लगाते हैं ना लड़कियों पर कि 7 के बाद घर के बाहर नहीं निकलना, इस टाइम से घर पर लौट कर आना, वैसे रिस्ट्रिक्शन लड़कों पर भी लगने चाहिए। क्या करता है आपका लड़का रात रात भर घूमकर, कहाँ घूमता है, किसके साथ होता है, क्या हरकतें करता है, उसके फ्रेंड सर्कल कैसे, उसका नजरिया कैसा है, इन सब बातों पर भी नजर डालना और अपने बेटे को भी इक्वल ट्रीट करना, ये भी जरूरी होता है। तो लड़कियां तो पढ़ ही रही है, अब लड़कों को पढ़ाने की जरूरत है और उन्हें समझदार बनाने की जरूरत है। तो याद रखिए, अब वो वक्त है राजा बेटा को सुधारने की, क्योंकि राजा बेटा सुधार लो, रानी बेटी तराज कर लेगी। Stay tuned. Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: भाई लड़कियां कैसे पागलों वाली बात कर रही है ना, कि लड़कों को सिखाओ हमें मत सिखाओ, ऐसा कुछ कुछ लोग तो समझेगे ही। लड़कों को तमीज में रहना जरूरी है। क्या गलत बोल रही है, सही तो बोल रही है। एक छोटी सी बात है कि हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अब इतनी छोटी बात समझने के लिए कोई कोर्स थोड़ी ज्वाइन करोगे, इतने तुम तो पागल नहीं होना लड़के। तुम्हें इतनी सी छोटी बात समझ में नहीं आती कि हमें किसी भी लड़की को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहिए, हैरेस नहीं करना चाहिए, रेप नहीं करना चाहिए। तुम्हें इतनी छोटी बात समझ में नहीं आती। यू आर बोर्न एज अ मैन एंड मेन्स आर प्रोटेक्टर, मेन्स आर प्रोवाइडर। भाई तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना कि लड़कियों को सेफ फील कराना, उन्हें कंफर्टेबल फील कराना, क्योंकि मर्दों की वजह से ना तो इस समाज इतना ज्यादा अनसेफ हो गया है कि जो ड्रीम सिटी होती है ना, जहाँ पर मन करता है जॉब करने का, और वही सबसे अनसेफ प्लेस बन गई है। पर वही वाली बात आई ना भाई, जिसके साथ होता है ना उसे तभी समझ में आता है। तो तुम्हारी भी माँ बहन होगी, तुम्हारी भी बेटी होगी, भगवान ना करे उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए, अगर तुम मर्द जात में पैदा हो चुके हो तो तुम्हारे ऊपर एक प्रोटेक्टर का टैग ऑलरेडी लग चुका है। तो जो लड़कियां तुम्हारे साथ रहती है ना, सेफ फील कराना ये हमारी जिम्मेदारी, उन्हें कंफर्टेबल फील करवाना ये हमारा फर्ज है। वैसे अनसेफ की बात हो ही रही है तो अपने शहर में भी ना लड़कियां सच में उतना सेफ फील करती है या नहीं, ये तो हम सभी को पता है कि अपना शहर भी कितना सेफ है, और अपने यहाँ पर भी ऐसे कितने सारे मामले सामने आए हैं। तो वही सवाल है कि अगर लड़की आपके साथ है तो उसको सेफ फील करवाना हर एक मर्द की जिम्मेदारी है। ये बात को याद रखिए एंड सुनते रहिए।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: तर आता वेळ आली आहे मुलांना सुद्धा शिकवायची की भाई तू अगर रात बेरात घर के बाहर निकल रहा है तो कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, किसके साथ जा रहा है और उस पर थोड़ी पाबंदी लगाने की, समझे। तर आपण अजून बोलणारच आहोत, स्टे ट्यून।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: Let's talk about women's safety. You're listening to MGM 90.8 FM. और अभी जो कुछ चल रहा है हम सभी को पता है. एंड अपने छत्रपति संभाजी नगर में विमेन सेफ्टी कितनी है, अपने यहाँ पर के लेडीज लड़कियाँ महिलाएं सुरक्षित फील करती है या नहीं, आइए जानते हैं.
1: नमस्कार, माझं नाव गौरी, मी गजानन मंदिर विजयनगरच्या तिकडे राहते. मुली उशिरा जॉब वरून घरी येतात आणि त्यांचा सुरक्षेचा प्रश्न पडतो. आजकालचं वातावरण पाहिलं तर खूप खराब आहे. मुली बाहेर असतील तर त्यांच्या सुरक्षेचे प्रश्न निर्माण होते. त्यामुळे शहरात चांगले प्रकाश व्यवस्था, पोलिसांची व्यवस्था आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक असणे गरजेचे आहे. मुलींना सुरक्षितपणे कुठेही जाता येईल असं वातावरण निर्माण झालं पाहिजे. धन्यवाद.
0: एक्जैक्टली, बात तो एकदम सही है. तो इस वजह से विमेन सेफ्टी के लिए प्रशासन ने कुछ ना कुछ अहम कदम उठाने चाहिए ताकि अपने शहर की लड़कियां सेफ फील करें. और हम सबकी भी जिम्मेदारी होती है कि अपने शहर की महिलाओं की सेफ्टी की और उन्हें कोई दिक्कत ना हो और उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ख्याल रखने की. तो मर्दों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि असली मर्द वही होता है अगर कोई लड़की उसके साथ सेफ फील करती है, या जब वो रास्ते से गुजरता है तो सामने से अगर कोई लड़की आ रही है वो अगर आपको देखकर रास्ता ना पलट ले तो आप सच्चे मर्द हो. वरना छपरे बना तो बहुत चलता है, हम सभी ने देखा है. लड़के सरेआम लड़कियों को छेड़ते हैं, चाहे फिर कैनोट पेस हो, जाना रोड हो, कोई कॉलेज के सामने का एरिया हो या हर जगह हो. तो अगर मर्द बनना है तो महिलाओं की सुरक्षा करनी आनी चाहिए, ये हमारा फर्ज है मर्दों का, समझे. स्टे ट्यून्ड.

0: बाय द वे आपल्या शहरात ना लाखो रुपये करोडो रुपये खर्च करून लोकांच्या सेवेसाठी एक स्काय वॉक तयार करण्यात आला आहे. एक काय दोन चार आहेत पण खरंच आपण त्या स्काय वॉकचा वापर करतोय का? तर नाही नाही म्हणजे नाहीच. हमें तो मौत से खेलने की आदत लग चुकी है और मौत को छुके टक से वापस आने का एक शौक भी चढ़ चुका है. स्काई वॉक मतलब पता है ना आपको क्या है? वही जो हमने देखा है सेवन हिल ब्रिज क्रॉस करने के बाद सेंट फ्रांसिस स्कूल के पास से जो ब्रिज आता है ताकि लोग वहां से रास्ता क्रॉस करे उसको स्काई वॉक कहते हैं. और वैसा ही एक ब्रिज ना अपने सेंट्रल बस स्टैंड के पास भी लगाया हुआ है ताकि लोगों को आसानी हो जाए रोड क्रॉस करने में जो पैदल चलते हैं. लेकिन लोग खतरों के खिलाड़ी खेलते हैं और स्काई वॉक का यूज ना करते हुए सीधे ट्रैफिक वाले रास्ते से रोड क्रॉस करते. खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए और गलती से एक्सीडेंट हो जाए तो ऐसे वक्त क्या करोगे भाई? गलती तो आपकी है क्योंकि प्रशासन ने तो भाई स्काई वॉक तैयार करके दिया है, लेकिन इस्तेमाल कौन करेगा? क्योंकि रूल्स फॉलो करना ये तो अरे अरे ये तो हमसे होगा ही नहीं. तो इसीलिए भाई और स्पेशली कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं वो इतने मुश्किल तरीके से रास्ता क्रॉस करते हैं और कुछ लेडीज भी होती है. भाई साहब और बहन जी अगर गलती से थोड़ा भी धक्का लग गया गाड़ी का तो बड़ा नुकसान हो सकता है. तो प्लीज कृपया करके आप सभी से दरख्वास्त है अपने शहर में जहां जहां पर स्काई वॉक बनाए हुए हैं उसको यूज कीजिएगा, वरना स्काई वॉक कम और वो रील बनाने की स्पेस बन चुकी है. क्योंकि अब अगर स्काई वॉक खाली रहा तो लोग क्या करेंगे, वहां पर आके टाइम पास करेंगे, रील्स बनाएंगे. तो आजकल यही चल रहा है स्काई वॉक पर. तो बी सेफ बी केयरफुल, क्योंकि जाने तो जहाने भले आपको स्काई वॉक से एक मिनट लेट होगा लेकिन आपकी जान तो बचेगी. फिर मत कहना कि यार काश मैंने स्काई वॉक यूज किया होता तो आज मेरा एक्सीडेंट ना होता. तो गलती आपकी है तो कुछ चीजें बनाई है ना प्रशासन ने हमारी सेफ्टी के लिए, तो उसका तो इस्तेमाल करो. वरना अक्सर कहते हैं कि प्रशासन कुछ करती नहीं है, जब करती है तो आप उसका यूज नहीं करते हो. खैर मेरा तो काम है भाई बोलना, मैंने तो बोल दिया, बाकी आपकी जिम्मेदारी. बट इतना ही कहूंगा कि स्काई वॉक है यूज कीजिए और सुनते रहिए.
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और

ఏక పేరైనా, యా గోడా బోల్లా, యా చతుర బోల్లా, యొక్క చతుర.